ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उसके सामने जाने से इनकार किया तो उनके आमाल जाए हो गए और हम कयामत के दिन उनके लिए कुछ भी वजन कायम नहीं करेंगे।

0: और मैं अपने बाद अपने भाई बंधुओं से डरता हूं और मेरी बीवी बांझ है, तो मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा।
1: यरितुनी व यरितु मिन आल याकूब वजअलहु रब्बी रदिया।
0: जो मेरी और औलाद याकूब की मीरास का मालिक हो, और ऐ मेरे परवरदिगार उसको खुश अतवार बनाइयो।

0: सब उसी का है।
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى
0: और अगर तुम पुकार कर बात कहो तो वो तो छुपे भेद और निहायत पोशीदा बात तक को जानता है।
1: اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सब नाम अच्छे हैं।
1: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى
0: और क्या तुम्हें मूसा के हाल की खबर मिली है।
1: इذ

उन्होंने कहा कि जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं उन पर और जिसने हमको पैदा किया है उस पर हम आपको हरगिज तरजीह नहीं देंगे, तो आपको जो हुक्म देना हो दे दीजिए, और आप जो हुक्म दे सकते हैं वो सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी में दे सकते हैं।

0: तो उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी उसका कालिब जिसकी आवाज गाय की सी थी। तो लोग कहने लगे कि यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का माबूद है, मगर वो भूल गए हैं।
1: अफला يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا।
0: क्या ये लोग नहीं देखते कि वो इनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और न उनके नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार रखता है।
1: وَلَقَدْ

0: और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि लोगों, इससे सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है और तुम्हारा परवरदिगार तो खुदा है, तो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो।
1: قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى।
0: वो कहने लगे कि जब तक मूसा हमारे पास वापस ना आए, हम तो इसकी पूजा पर कायम रहेंगे।
1: قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا।
0: फिर मूसा ने हारून से कहा कि हारून, जब तुमने उनको देखा था कि गुमराह हो गए हैं, तो तुमको किस चीज ने रोका?
1: अल्लाह तत्तबिअनी अफअसैता अम्री,
0: यानी इस बात से कि तुम मेरे पीछे चले आओ, भला तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ क्यों किया?
1: قَالَ

0: उस रोज किसी की सिफारिश कुछ फायदा न देगी मगर उस शख्स की जिसे खुदा इजाजत दे और उसकी बात को पसंद फरमाए।
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا
0: जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है वो उसको जानता है और वो अपने इल्म से खुदा के इल्म पर इहाता नहीं कर सकते।
1: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا
0: और उस जिंदा कायम के रूबरू मुंह नीचे हो जाएंगे और जिसने जुल्म का बोझ उठाया वो नामुराद रहा।

तो खुदा जो सच्चा बादशाह है, आली कद्र है, और कुरान की वही जो तुम्हारी तरफ भेजी जाती है उसके पूरा होने से पहले कुरान के पढ़ने के लिए जल्दी न किया करो, और दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे और ज्यादा इल्म दे।

तो शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा कि आज भला मैं तुमको ऐसा दरख्त बनूं जो हमें की जिंदगी का समरह दे और ऐसी बात चाहत कि कभी जायल ना हो।

क्या ये बात उन लोगों के लिए मूजिबे हिदायत न हुई कि हम उनसे पहले बहुत से फिरकों को हलाक कर चुके हैं जिनके रहने के मकामात में ये चलते फिरते हैं। अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं।

0: और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले सादिर और जजाए आमाल के लिए एक मियाद मुकर्रर न हो चुकी होती तो नुजूल अजाब लाजिम हो जाता।
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح

बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो, और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह और तहमीद किया करो, और रात की सात अव्वलीन में भी उसकी तस्बीह किया करो, और दिन की अतराफ यानी दोपहर के करीब जोहर के वक्त भी, ताकि तुम खुश हो जाओ।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: मेरी जिंदगी का तुझसे

0: किया गया था, बल्कि नबूवत के चौथे साल से हिजरत से पहले के आखिरी मौसम हज तक 10 साला मुद्दत के दौरान पेश किया गया था। इब्न इसहाक ने बास कबाइल पर इस्लाम की पेशी और इनके जवाब की कैफियत का भी जिक्र किया है, जिनकी तफसील मंदरजा ज़ैल है। बनू कल्ब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस कबीले की एक शाख बनू अब्दुल्ला के पास तशरीफ ले गए, इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और अपने आप को इन पर पेश किया। बातों बातों में ये भी फरमाया कि ए बनू अब्दुल्ला, अल्लाह ने तुम्हारे जदे आला का नाम बहुत अच्छा रखा था, लेकिन इस कबीले ने आपकी दावत कबूल ना की। बनू हनीफा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इनके डेरे पर तशरीफ ले गए, इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और अपने आप को इन पर पेश किया, लेकिन इन जैसा बुरा जवाब अहले अरब में किसी ने भी ना दिया। आमिर बिन सासमा। इन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ दावत दी और अपने आप को इन पर पेश किया। जवाब में इनके एक आदमी ने बोला, खुदा की कसम, अगर मैं कुरैश के इस जवान को ले लूं तो इसके जरिए पूरे अरब को खा जाऊंगा। फिर इसने दरियाफ्त किया कि अच्छा ये बताइए, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से आपके इस दीन पर बैत कर लें, फिर अल्लाह आपको मुखालफीन पर गलबा अता फरमाए, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद जमाम कार हमारे हाथ में होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाम कार तो अल्लाह के हाथ में है, वो जहां चाहेगा रखेगा। इस पर उस शख्स ने कहा, खूब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की हिफाजत में तो हमारा सीना अहले अरब के निशाने पर है, लेकिन जब अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को गलबा अता फरमाए तो जमाम कार किसी और के हाथ में हो, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दीन की जरूरत नहीं। गर्ज इन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद जब कबीला बनू आमिर अपने इलाके में वापस गया तो अपने एक बूढ़े आदमी को, जो किब्रे सनी के बायस हज में शरीक न हो सका था, सारा माजरा सुनाया और बताया कि हमारे पास कबीला कुरैश के खानदान बनू अब्दुल मुतलिब का एक जवान आया था, जिसका ख्याल था कि वो नबी है। उसने हमें दावत दी कि हम उसकी हिफाजत करें, इसका साथ दें और अपने इलाके में ले आएं। ये सुनकर उस बूढ़े ने दोनों हाथों से सर थाम लिया और बोला, ए बनू आमिर, क्या अब इसकी तलाफी की कोई सबील है और क्या इस अजदस रफ्ता को ढूंढा जा सकता है? उस जात की कसम जिसके हाथ में फना की जान है, किसी इस्माइल ने कभी उस नबूवत का झूठा दावा नहीं किया, यकीनन हक है, आखिर तुम्हारी अकल कहाँ चली गई थी? ईमान की शुआएं मक्के से बाहर। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कबाइल और वफूद पर इस्लाम पेश किया, इस तरह अफराद और अशखास को भी इस्लाम की दावत दी और बाज़ ने अच्छा जवाब भी दिया। फिर इस मौसम हज के कुछ ही अरसे बाद कई अफराद ने इस्लाम कबूल किया। सुवेद बिन सामत। ये शायर थे, गहरी सूझबूझ के हामिल और यसरब के बाशिंदे। इनकी पुख्तगी, शेर गोई और शर्फ नस्ब की वजह से इनकी कौम ने कामिल का खताब दे रखा था। ये हज या उमरा के लिए मक्का तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी, कहने लगे, गालिबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास जो कुछ है वो वैसा ही है जैसा मेरे पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास क्या है? सुवैद ने कहा, हिकमत लुकमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, पेश करो। इन्होंने पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलाम यकीनन अच्छा है, लेकिन मेरे पास जो कुछ है वो इससे भी अच्छा है, वो कुरान है जो अल्लाह ताला ने मुझ पर नाजिल किया है, वो हदायत और नूर है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया और इस्लाम की दावत दी। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और बोले, ये तो बहुत ही अच्छा कलाम है। इसके बाद वो मदीना पलट कर आए ही थे कि जंगे बुआस छिड़ गई और इसी में कत्ल कर दिए गए। इन्होंने सुना नबवी के आगाज में इस्लाम कबूल किया था। सामईन, वक्त की कमी के बायस हम अपने इस सिलसिले को यहीं पर इख्तिताम पजीर करेंगे। आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली नशिस्त में। इसके साथ ही कासिम भट्टी को दीजिए इजाजत, अल्लाह नेगेबान।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is
1: 92.6.
2: जी तो सामिन, हम वापस आ चुके हैं। उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा अभी तक। सर, अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे प्रेसिडेंशियल निज़ाम और पार्लियामेंट्री निज़ाम पे। सर, अभी मौजूदा वक्त में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सदर के पास जमहूरी निज़ाम में रहते हुए क्या अख्तियार आते हैं?
3: देखें, 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सदर के पास नॉमिनल पावर्स रह गई हैं, यानी कि वो एक टाइटलर हेड के तौर पर है। जिस तरह से ब्रिटेन में ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट के वजूद के बाद जो है वो जो क्वीन है या किंग है उसके पास नॉमिनल पावर्स रह गई हैं। जितने भी अहम मामलात हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट्स जो हैं वो डिसीजंस लेती होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में हुआ कि जितने भी अहम मामलात हैं उनके ऊपर जो है वो हमेशा बिल जो है वो इनिशिएट होता है पार्लियामेंट से, वो फिर साइन होता है, उस पर डिबेट होती है पार्लियामेंट में, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो दोनों हाउसेस से उस बिल को मंजूर करते हैं, फिर वो बिल जो है वो सदर पाकिस्तान के पास जाता है फाइनल सिग्नेचर के लिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सदर जो हैं वो उसमें कुछ तब्दीली जो है वो रिकमेंड करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो बिल को उसी तरह से मंजूर कर देते हैं। तो एक उनके पास सबसे बड़ा इख्तियार ये है कि जब बिल जो है वो लॉ बनने लगता है तो उस प्रोसेस की जो कंप्लीशन है वो विद द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होती है। लेकिन इसमें भी ऐसा हो सकता है कि अगर दो रिपीटेशंस के बाद बिल जो है वो सदर पाकिस्तान से अप्रूव नहीं भी होता और हाउस उसको दूसरी तीसरी दफ़ा जो है वो अप्रूव कर देता है तो वो बिल लॉ बन जाता है। दिस शोज कि आपकी जो पार्लियामेंट है इवन वो लॉ बना सकती है अगर सदर का उस पर सिग्नेचर भी ना। उसके अलावा सदर के पास जो इख्तियारात होते हैं वो एक सबसे अहम अख्तियार है जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता होता है। ऑर्डिनेंस जो है वो एक एमरजेंसी लॉ होता है जो कि उस वक्त बनाया जाता है जब पार्लियामेंट एंड सेशन नहीं होती और किसी अहम मामले के ऊपर आपको लॉ मेकिंग की जरूरत हो, तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो थोड़े अरसे के लिए जो है वो लागू होता है। उसके बाद अगर उसको पार्लियामेंट रिकग्नाइज या एक्नॉलेज नहीं करेगी तो वो लॉ नहीं बन सकेगा। तो प्रेसिडेंट के पास दूसरा सबसे बड़ा अख्तियार ये है कि वो इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जो कि उस वक्त के लिए लागू होता है। जो तीसरा सबसे बड़ा अहम जो अब उसके पास इख्तियार होता है वो है पार्डन या रिप्रीव का, यानी कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसको कोर्ट्स की तरफ से सजा हुई हो वो सजा जो है वो डेथ पेनल्टी तक भी हो सकती है, उसकी एक एप्लीकेशन जो है वो सदर पाकिस्तान को अगर फॉरवर्ड की जाए और उसमें वो माफ़ी की दरख्वास्त करे सदर को, तो सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो उसको माफ़ी दे देता होता है। इसको पार्डन या रिप्रीव कहा जाता है, यानी कि आपके शहरियों में से कोई एक शहरी जो है अगर वो किसी गुनाह का किसी जुर्म का मुर्तकब हुआ है तो उस जुर्म में जो है वो जो उसे सजा हुई है उसकी माफ़ी देना जो है वो सदर के इख्तियार। इसके अलावा ये है कि जब खारजा अमूर डिसाइड हो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी सदर का किरदार होता है। जब सेरेमनीज हो रही होती हैं या हेड ऑफ स्टेट आपको विजिट कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपने उन्हें वेलकम करना होता है, तो ये सेरेमोनियल्स जो हैं वो कुछ रोल्स होते हैं जो सदर को परफॉर्म करने होते हैं।
2: सर, अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी कि जमहूरियत निज़ाम में क्रैक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। सर, वो किन किन इंस्टीट्यूशन की आप बात कर रहे थे कि जिनका रोल बहुत अहम है?
3: देखें, दो तरह के इदारे होते हैं किसी भी एक रियासत में या जमहूरियत में। वो दो इदारे जो हैं एक गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहे होते हैं पैरेलल, जो कि उतने ही मजबूत होते हैं जितना के सरकारी इदारे होते हैं। क्योंकि हमारा फोकस जो है वो रियासत के ऊपर है तो हम सरकारी इदारों की बात कर लेते हैं। हकूमती इदारे जो हैं वो थ्योरेटिकली तो जो है वो तीन इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, जो कि एक रियासत को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इज टू फॉर्म लॉज, वो कवानीन बनाते हैं और उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए आपके पास एक दूसरा इदारा मौजूद है जिसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहा होता है, जिसको एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है। अब एग्जीक्यूटिव जो है उसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक ब्रॉडर सेंस में और एक नैरो सेंस में। ब्रॉडर सेंस में फ्रॉम लाइक प्राइम मिनिस्टर टू पटवारी जो है वो आपके एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है। नैरो सेंस में ये किया जाता है कि इसमें डिस्टिंक्शन की गई है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर और होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और होते हैं। एग्जीक्यूटिव स्टाफ वो होता है जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वो होता है जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होते हैं। सो बुनियादी जिम्मेदारी जो है यहाँ पे वो लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले इदारों पे आती है, जिन्होंने इन्फोर्स करना है। लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, उसके अलावा मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद द सिविल मैटर तो आपको लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स जैसे इदारों से सामना करना पड़ेगा, और अगर तो आप जो हैं वो किसी क्रिमिनल उससे डील कर रहे हैं तो आपको पुलिस और इस जैसे इदारों, दे ऑल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो तीसरा और सबसे अहम इदारा है जमहूरी मुल्क में वो है जुडिशरी का, जिसे अदलिया कहा जाता है। इसका बुनियादी काम कानून को नाफिज होने के प्रोसेस के दौरान जो इंसाफ है उसके तकाजों को मद्देनजर रखना है, और साथ ही साथ जो है वो कानून की इंटरप्रिटेशन करना है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कवानीन जो है वो बड़े एम्बिगुअस होते हैं, जब वो बन के आते हैं तो उनकी ट्रांसलेशन नहीं होती, जिसमें जो जुडिशरी है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये बनती है जजेस अपनी बसात और अपनी प्रूडेंस के मुताबिक जो है वो इंटरप्रिटेशन करते हैं लॉ की, और उसको किसी स्पेसिफिक केस के ऊपर लागू करते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कानून मौजूद ही नहीं होता, तो उसमें जो है वो इक्विटी के प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए वो इंसाफ मुहैया करते हैं। तो हकूमती इदारों की अगर बात की जाए तो यही तीन इदारे हैं जो कि एक रियासत को चलाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। आज की जो मॉडर्न स्टेट है उसमें यह कहा जाता है कि एक चौथा इदारा भी एस्टेब्लिश हो गया है जिस पे उतनी ही जिम्मेदारी आयद है जितना इन तीन सरकारी इदारों पे है, और वो मीडिया है। मीडिया को भी उतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है एक जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए जितना ये तीनों इदारे हैं।
2: जी सर, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। सर, हारजा पॉलिसी, एक जमहूरी रियासत को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को अपनी हारजा पॉलिसी कैसी बनानी चाहिए ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी अपना रिलेशन ठीक बना सके और अपनी अवाम के साथ भी अपना जमहूरी प्रैक्टिस कर सके?
3: देखें, पहले इसके कि हम फॉरेन पॉलिसी या खारजा पॉलिसी जो है उसका आउटकम्स को देखेंगे, कितनी इफ़ेक्टिव वो पॉलिसी हो सकती है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस तरह का है। इस प्रोसेस में कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से मुहरकात हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी क्या होगी। बहुत से स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि इसमें आपके इलेक्टेड ऑफिशियल्स के साथ साथ आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आपका जो ब्यूरोक्रेसी है, आपका इवन के जो रोल ऑफ पर्सनैलिटीज है, यानी कि आपकी खारजा पॉलिसी को ट्रांसलेट करने के लिए जो आपका इलेक्टेड स्टाफ है या जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो किस तरह से सोचते हैं, उनका सोचने का मायार क्या है। क्योंकि अब तो जो है वो 1960s के बाद ऐसा हुआ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने और न्यूरोसाइंस ने ये देखना शुरू किया कि एक इंसान कितना रैशनल सोचता होता है और कितना इरैशनल सोचता है। क्योंकि रियासत की जो खारजा पॉलिसी है वो अफराद बना रहे होते हैं, फर्द जो हैं उसका हिस्सा होते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक फर्द जो है वो सोचता कैसे, उसके जहन का कितना हिस्सा जो है वो मंतकी लिहाज से सोचता होता है और कितना हिस्सा जो है वो इमोशनली सोचता होता है। सो दुनिया में हमारे पास कई ऐसे खारजा पॉलिसी के आउटकम्स हैं जिनमें प्रोसेस के दौरान ऐसे अफराद जो हैं वो शामिल थे जो कि जहनी लिहाज से ज़रा इमोशनली सोचते होते थे, या उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी। अगर इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ पुटिन, रशिया की अगर हम एग्जांपल लें, तो ही इज़ अ मिलिट्री मैन और वो मिलिट्री की तरह सोचता है। हाउ वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मिलिट्री मैन टू बिहेव डिप्लोमेटिकली? अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक इंसान है, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग हुई है, तो जब वो फॉरेन पॉलिसी बना रहा होगा तो हमेशा अग्रेसिव मींस को इस्तेमाल कर रहा होगा किसी भी मसले का हल निकालने के लिए। और एक बंदा है जिसने, या एक फ़र्द है जिसने जो है वो उसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है, उसने डिप्लोमेटिक वे से जो है उन चीजों को हल करना है, ये एक अहम फैक्टर हो सकता है। सो प्रोसेस जो है वो ज्यादा अहम होता है बैन अलावा ताल्लुकात में, बजाय इसके कि हम उसके आउटकम्स देखें।
2: जी तो सामिन, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। यूसीपी की दुनिया।
1: प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ हम वापस आ चुके हैं। तो अब हम करते हैं सर से कुछ मजीद सवालात और अपने आखिरी मरहल में भी दाखिल होते हैं। सर, जमहूरियत की हम बात कर रहे थे तो एक आम बंदा, यानी कि मैं भी एक आम बंदा हूँ, सुनने वाले भी हमारे काफ़ी आम लोग होंगे, तो सर ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुल्क की जमहूरियत कहाँ पर खड़ी हुई है और दूसरे मुल्क की जमहूरियत किस मुकाम पर खड़ी हुई है?
2: देखें, पहला जो अहम पहलू है वो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ जो इलेक्शंस हैं वो कितने फ्री एंड फेयर हो रहे हैं और वो पीरियोडिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर उसमें इलेक्शंस के दौरान या ऐसा हो कि बेजाबतगियों के कुछ इल्ज़ाम आएं या कुछ ऐसा हो कि जिसमें लगे कि जी रिजीम जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर रही, 5 साल मुकम्मल नहीं हो रहे, तो ये एक ऐसा नेगेटिव इम्प्रेशन मिलता है जैसे जमहूरी प्रोसेस में कुछ अवामिल जो हैं वो ऐसे हैं जो कि इस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं होने दे रहे। एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस लिहाज से जो है वो इफेक्टिवली अपना काम कर रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि एक शहरी जो है वो अपने ख्यालात और अपने एक्सप्रेशन के लिहाज से कितना आज़ाद है अपनी राय का इजहार करने में। वो राय जो है वो नेगेटिव सेंस में नहीं हो सकती, वो किसी नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर नहीं हो सकती। वो राय ये हो सकती है कि आप इन्फरादी तौर पे किसी भी सोशल इशू के ऊपर, किसी भी पॉलिटिकल इशू के ऊपर किस तरह की राय रखते हैं बगैर किसी और के सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचाए, आप उसका इजहार कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे अहम चीज होगी वो ये होगी कि आपके जो मुल्क है उसमें जो रूल ऑफ लॉ है, यानी कि क्या कानून जो है वो सबको एक ही तरह से देख रहा है या कानून के लिए मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ तरह का आप उनको प्रिविलेजेस मिलेंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे जमहूरी तकाजे पूरे नहीं हो रहे। क्योंकि जमहूरियत में ऐसा होता है कि रूल ऑफ लॉ होता है और कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है। चौथा जो सबसे अहम आप वेरिएबल देख सकते हैं वो ये है कि आपका प्रेस जो है वो कितना आज़ाद है अपनी जो आ रहा है, क्योंकि प्रेस की बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाना। अगर तो वो ये कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और बीच में कोई ऐसी फोर्सेस नहीं है जो हायल हो, तो मुल्क जमहूरी होगा। अगर आपके इसके साथ साथ जो है वो मिलिट्री सबॉर्डिनेट टू इलेक्टेड ऑफिशियल्स है और बहुत से इदारे जो हैं वो अपने डोमेन में रह के काम कर रहे हैं, तो मुल्क जमहूरी तस्वर होगा। अगर इनमें से कोई भी एक वेरिएबल है, जैसा कि इलेक्शंस जो हैं वो 10-10 साल नहीं हो रहे, तो फिर आप कहेंगे कि रिजीम जो है वो अथॉरिटेटिव है। जैसा कि किसी एक सियासी जमात का अगर रूल के ऊपर कब्जा है, तो फिर ये इम्प्रेशन जाएगा कि जैसे रूल जो है वो अथॉरिटेटिव है या टोटलिटेरियन रूल है जिसमें टोटल कंट्रोल जो है वो एक सियासी जमात के पास है। इसके अलावा जो है अगर इलेक्शंस में लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिल रहे, तो फिर ये इम्प्रेशन जाएगा कि जैसे रिजीम जो है वो अथॉरिटेरियन है या डेमोक्रेटिक नहीं। सो इस तरह के और बहुत से वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए आप असेस कर सकते हैं कि कोई मुल्क जो है वो जमहूरी है या नहीं है।
1: जी सर, बिल्कुल ठीक। सर, अमूमन हमारे लोगों में ये तासर है कि लोग पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं समझते। अगर कोई बच्चा पॉलिटिक्स पढ़ने का नाम लेता है तो कह देते हैं कि नहीं, ये हमारी डोमेन नहीं है, ये कुछ और लोगों की डोमेन है। तो सर, आपके ख्याल से हर एक बंदे के लिए या हर एक तबके के लोगों के लिए पॉलिटिक्स पढ़ना कितना ज़रूरी है?
2: देखें, हमें ये समझना पड़ेगा कि सियासत जो है वो एक सब्जेक्ट की हैसियत से, एक डिसिप्लिन की हैसियत से हमें पढ़नी चाहिए। उसकी वजूहात हो सकती हैं। हाँ, आपका मेरा इस बात के ऊपर डिबेट हो सकती है कि सियासत जो है वो एक नास्टी बिजनेस है, एक ऐसा काम है जो कि अमूमन तसव्वुर ये है कि वो अच्छा बिजनेस नहीं है और पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्ट होते हैं हर मुल्क में। तो हम इस फिनोमेनाज को क्यों पढ़ें, इन फिनोमेनाज को, और हम क्यों इन चीज़ों पर तवज्जो दें? लेकिन बात यह है कि बहुत से ऐसे फिनोमेनाज हैं जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं लेकिन फिर भी आप करते हैं। अगर हम मिसाल लें एक बायोलॉजी या बायोटेक पढ़ने वाले की, तो वो बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। अब बैक्टीरिया जो हैं वो जानलेवा भी होते हैं बाज़ दफ़ा, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि क्योंकि वो जानलेवा फेनोमेना है तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। इंसान को जो है वो हर तरह का नॉलेज जो है वो लेने की ज़रूरत है। और क्योंकि अवैल में ऐसा होता था कि इंसान जो है वो पॉलीमैथ होते थे, मतलब वो हर तरह का नॉलेज लेते थे, क्योंकि आप एक सियासी तौर पर ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं और आपका और रियासत का जो रिश्ता है वो शहरी का और स्टेट का है, तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ ए कंट्री आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रियासत आपको देने की मुतहम्मिल हो सकती है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रियासत बदले में आपसे एक्सपेक्ट करती है। सो एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने की हैसियत से आप में सिविक सेंस होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होनी चाहिए कि आप जो है ना वो कानून की पासदारी को अपने लिए वाजिब समझें या फर्ज समझें, और साथ ही आपको कवानीन का पता भी होना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, आपको सियासी जमातों के रोल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं।
1: सर, यूसीपी की अगर हम बात करें तो यूसीपी अपना क्या रोल अदा कर रही है पॉलिटिक्स की स्टडी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में और किस तरह से पहुंचा रही है?
2: देखें, यूसीपी में पूरा एक इदारा जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर जो है वो इसी कोशिश में है कि तमाम ऐसे तलबा जो कि इंटरेस्ट रखते हैं बैन अलाक्वामी अमूर में या सियासत में, उनको 4 साल डिग्री कराई जाए जिसको बीएस ऑनर्स कहा जाता है। और साथ ही 2 और पैरेलल प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें एमफिल इंटरनेशनल रिलेशंस है और पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस है, कि आप एकेडमिकली किस तरह से जो बैन अलाक्वामी सियासत में जो है वो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, वो तब्दीलियां किन मुहरकात की बेस पे हो रही हैं, उनमें क्या क्या पाकिस्तान का किरदार हो सकता है या एकेडमिक्स का या स्कॉलर्स का किरदार हो सकता है इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इन सियासी जो तनाजुर में तब्दीलियां हो रही हैं इनको समझने में और इनके ऊपर बात करने में। तो यूसीपी का पूरा एक डिपार्टमेंट जो है वो इसी तगोदो में है, हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स का डिपार्टमेंट है, कि किस तरह से लोगों में सिविक सेंस डिवेलप की जाए, उनमें बैन अलाक्वामी अमूर के बारे में आगाही जो है वो पैदा की जाए, और बहुत से ऐसे सियासी और समाजी मसाइल जो कि आज पाकिस्तान जो है वो फेस कर रहा है, उनको समझे बगैर हम उनका हल नहीं निकाल सकते। सो मेरा ये ख्याल है कि यूसीपी का ये जो डिपार्टमेंट है ये इसी उसमें जहत में काम कर रहा है कि किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल शहरी जो है वो बनाया जा सकता है।
1: बहुत शुक्रिया सर, आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे इख्तिताम होता है। बहुत शुक्रिया आपका पाए, आपने बहुत कुछ सिखाया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद है कि स्टूडियो से बाहर बैठे लोग जो कि सुन रहे होंगे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा।
2: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
1: तो सामीन, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे अख्ताम करते हैं, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

0: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP Kidunia.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 और आप लोग जिसकी आवाज़ सुन रहे हैं वो है फातिमा अहमद एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में. और हम लोग आज जिस आर्टिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं उनका नाम है अली ज़फ़र. और अली ज़फ़र वो तो ना कंप्लीट पैकेज, बिल्कुल अली ज़फ़र वो हैं. अली ज़फ़र इज़ गुड लुकिंग, अली ज़फ़र हैज़ अ गुड वॉइस, अली ज़फ़र हैज़ अ ब्यूटिफुल फ्लो ऑफ राइटिंग एंड इवन स्केचिंग. और उसके साथ साथ यू नो हैज़ दोस एक्सप्रेशंस जिनके साथ वो आपको अपनी एक्टिंग के थ्रू आपको दीवाना कर देते हैं. और अली ज़फ़र जो हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे, उनको हमने डिस्कस किया कि यू नो हाउ ही स्टार्टेड हिज करियर. तो उन्होंने 2003 में एक फिल्म आई थी शरारत, उसके लिए उन्होंने जुगनुओं से भर दे आचल जो है वो गाना उन्होंने गाया. उसी साल में उन्होंने अपनी एल्बम जो है सबसे पहली हुक्का पानी के नाम से वो रिलीज़ की, विच वॉज़ अ ह्यूज ह्यूज ह्यूज सक्सेस, जिसमें उन्होंने 5 लाख कॉपीज़ जो हैं वो उन्होंने वर्ल्ड वाइड उन्होंने सेल की थी. और ही वॉन सेवरल अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस फॉर दैट स्पेसिफिक एल्बम. और उसके अलावा उन्होंने ही इज़ अ पॉपुलर मोस्ट पॉप सिंगर इन पाकिस्तान इवन स्टिल. और यू नो ही हैज़ ऑल्सो क्लेम्ड बॉलीवुड पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं उन्होंने उनको उनका जो गाना था छन्नो और रंगीन फ्रॉम दैट एल्बम उनको जो है दिल्लगी में जो बीट्स जाए फॉर अनदर फिल्म और मतलब कि इंडियन फिल्म जो हैं उनके लिए उन्होंने उस गाने को भी ऑप्ट किया. और उसके बाद उन्होंने 2006 में नवंबर 2006 में उन्होंने एक और एल्बम सेकेंड एल्बम अपनी रिलीज़ की मस्ती के नाम से, और जिसमें गाना था जो देखा के नाम से. वो म्यूज़िक वीडियो जो थी उसकी वॉज नेम्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव म्यूज़िक वीडियो ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ देन अगेन लाइक आपको तो डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो इम्पॉर्टेंस के तौर पे आपको डिफरेंट रिकग्निशन मिलती रहती है, लेकिन मोस्ट एक्सपेंसिव म्यूज़िक वीडियो इज़ लाइक ऑल्सो काइंड ऑफ अ कूल थिंग. उसके बाद उन्होंने उस स्पेसिफिक म्यूज़िक वीडियो को उस पर जो पैसे लगे थे वो अराउंड 10 मिलियन रुपीज़ लगे थे. दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी. और दिस वॉज शॉट बाय पाकिस्तानी लोकल ब्रांड और मलेशिया में इसको शूट किया गया था, जिसमें फीचरिंग थी रीमा खान, मीरा, आमना हक. भाई इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनको जब आपने स्टार लिया हो ना किसी फिल्म में तो फिर ऑब्वियसली यू नो किसी फिल्म में या किसी गाने में तो पैसे तो यार लगने ही थे. उसके बाद दिस सॉन्ग वॉज ऑल्सो मेड पार्ट ऑफ हॉलीवुड फिल्म वॉल स्ट्रीट जो जिसका नाम था मनी नेवर स्लीप्स, और सितंबर 2010 में. और दिस इज़ ऑल्सो कूल थिंग कि आपको हॉलीवुड में भी इसका एक चांस मिला. और ही इज़ करंटली द 4th पाकिस्तानी आर्टिस्ट आफ्टर नुसरत फतेह अली खान स्ट्रिंग्स एंड आतिफ असलम हु हैज लाइक उनके जो सॉन्ग्स हैं वो हॉलीवुड फिल्म में फीचर हुए हैं. उन्होंने यूथ आइकन का अवार्ड भी जीता हुआ है. और ही वॉज ऑल्सो ऑफर्ड अ role for 2007 in the film Khuda Ke Liye, which is a huge huge success and it is a beautiful movie. Aur but he was not able to sign because of some personal reasons. Aur phir uske baad wo jo role tha wo Fawad Khan ko offer kiya gaya tha. So you know, just imagine if he would have done it, shayad movie flop ho jati hai, shayad you know, I don't know what would have happened, lekin things would have been very very different kyunki Fawad Khan ko recognition us movie ke baad mili thi for his acting, at least that's what I think. Uske alawa 2010 mein he made his debut as a leading actor in a Bollywood film Tere Bin Laden. Aur you know, Tere Bin Laden is one of my favorite movies as well because it's funny and you know it's amazingly entertaining at the same time. Aur usme Ali Zafar, तो यू नो व्हाई वुडंट इट बी. उसके बाद दिस फिल्म वाज बेस्ड ऑन यू नो द स्टोरी ऑफ उसामा बिन लादेन एंड यू नो हाउ ही गोज टू अमेरिका एंड ऑल दोस थिंग्स. और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं वो उसमें अली ज़फ़र बने हुए हैं और यू नो ही इज़ फ्रॉम कराची एंड इट्स अ वेरी कूल मूवी. और आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है एक बहुत ही पोलिटिकल स्टोरी का. उसके बाद ये फिल्म जो थी 2010 में रिलीज़ हुई थी और इसको मेजर कमर्शियल सक्सेस मिली थी इंडिया में. और उसके बाद जफ़र की जो परफॉर्मेंस थी वो इट यू नो क्रिटिकली अप्रिसिएशन उसको मिला था, जिसकी वजह से उनको अवार्ड्स भी मिले थे और उनको फिर आगे भी फिल्म में ऑफ़र हुआ था और डिफरेंट रोल्स ऑफ़र हुए थे. फिर 2011 में उन्होंने अपनी थर्ड एल्बम झूम के नाम से उन्होंने रिलीज़ की और अब जिसको बेस्ट म्यूज़िक एल्बम के भी अवार्ड मिला था. और इन्होंने एक फिल्म थी लव का दी एंड जिसमें उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस किया था और ही सैंग द टाइटल सॉन्ग ऑफ लव में गुम. ये पाकिस्तानी मूवी थी और ये आई गेस रीमा ने डायरेक्ट की थी, आई थिंक सो. उसके बाद ही एक्टेड इन मेरे ब्रदर की दुल्हन, विच इज़ माई फेवरेट मूवी बिकॉज इट इज़ सो फन एंड इट इज़ लाइक आप हम कभी भी बोर नहीं हो सकते उस मूवी से. इट इज़ रियली फन और बहुत इंटरटेनिंग. और अली ज़फ़र की एक्टिंग जो है ना, लाइक सारे एक्टर्स में इट इज़ स्टैंडिंग आउट, इवन दो उस मूवी में बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी हैं. उसके बाद मार्च 2012 में अली ज़फ़र ने एक और इंडियन मूवी लंदन पेरिस न्यूयॉर्क में उन्होंने काम किया और ये मूवी भी थी, इसके जो साउंड ट्रैक्स थे वो भी अली ज़फ़र ने गाए थे और उन्हें ही कंपोज़ किए थे. उसके बाद ही यू नो ही वाज रिवॉर्डेड विद मेनी अप्रिसिएशन और यू नो बिकॉज ऑफ दो सॉन्ग्स और बिकॉज ऑफ दो दैट स्पेसिफिक एक्टिंग. और उसके बाद ही परफॉर्म्ड द साउंड ट्रैक फॉर पाकिस्तानी फिल्म ड्रामा ज़िंदगी गुलजार है, जो कि बहुत ही वो भी बात है कि बहुत मज़े का साउंड ट्रैक है. और वो गाना ड्रामा भी बहुत अच्छा था लेकिन वो जो साउंड ट्रैक था ना, वो उसकी वजह से एक बहुत खूबसूरत मैच बनता था. फिर ही डिड अ रोमांटिक कॉमेडी चश्मे बदूर के नाम से और बिग फनी लाइट मोड मूवी थी. और फिर उसी साल में यू नो ही फीचर्ड इन एपिसोड ऑफ बुरका एवेंजर्स, जिस जो बुरका एवेंजर्स तो एनिमेटेड पाकिस्तानी ड्रामा बच्चों के लिए ड्रामा था, विच वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नाइस. उसमें ही डिड वॉइस ओवर. Then he starred and composed the soundtrack for film Total Siapa, which was also romantic comedy. And then he did A Kill Dil, which was released in November. So, I mean, after that, they worked in very good other movies and featured different songs in it. But after that, the best project was called Udenge, which was a tribute to victims of APS Peshawar. And they had different voices जो थी उनको फीचर किया. और ये जो गाना था ऑब्वियसली इट वाज अ ह्यूज सक्सेस बिकॉज इट वाज रियली नीडेड और इट वाज ब्यूटीफुल एंड इट वाज वेरी सोलफुल बेसिकली. और लोगों को बहुत ज़रूरत थी ऐसे खूबसूरत गाने की. 2018 में जफ़र ने यू नो ही डिड अ रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म तीफा इन ट्रबल के नाम से अलॉन्ग साइड माया अली. और ये फिल्म जो है ये इतनी खूबसूरत और इतनी मज़े की मूवी है. और ये जो फिल्म के बारे में ये कि ये वीक डे में रिलीज़ हुई थी और वीक डे में रिलीज़ हुई थी और उसका सक्सेस जो है ना, क्योंकि वीकेंड पर रिलीज़ होती है ना मूवी तो इट इज़ अमेजिंग, लेकिन जो इस तरह वीक डेज में रिलीज़ होती है ना वो उनको थोड़ा सा टेंशन होती है कि यू नो वेदर इट विल बी अ सक्सेसफुल और नॉट. लेकिन दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म विच हैज़ बिन रिलीज्ड ऑन अ वीक डे. और ये ईद के आसपास रिलीज़ हुई थी तो यू नो इट वाज देन अगेन अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी. तो अब ऐसा करते हैं कि अली ज़फ़र का हम एक डायलॉग सुनते हैं, एक बहुत पॉपुलर डायलॉग सुनते हैं जो बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया. और परफॉर्म करने के साथ साथ इन्होंने एक फील्स होते हैं ना, वो यू विल आल्सो लिसन एंड यू विल एंजॉय. और फिर हम डिस्कस करेंगे कि यू नो हाउ डिड वी एंजॉय अली ज़फ़र्स अमेजिंग वॉइस एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस.
2: क्या कहा था जी मैंने, ये दुनिया बड़ी जालिम शहर है जी, ना जीने देती है ना मरने. जब जिंदा थे तो मरने मराने की बातें, मरने को आए तो उठोए उठोए की आवाजें, बंदा चाहे तो किधर जाए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है जी. बस इंसान को अपना दुनिया में आना तो याद रहता है पर चला जाना भूल ही जाता है. किसी स्याणे ने एक बारी कहा था कि वक्त सबसे बड़ा मरम होता है, टाइम पास हो ही जाता है.
3: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की. Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: 92.6.
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
2: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया। UCP की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सौरभ शम्स और आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ सुर कहानी। आज मैं आपके पास एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन के साथ आया हूं, जो शायद उतना ही गहरा भी है। हाउ इज अ सॉन्ग बॉर्न? क्या एक सॉन्ग सिर्फ कॉर्ड्स और लिरिक्स का नाम है, या फिर एक फीलिंग, एक मेमोरी, एक अनसुनी कॉन्वर्सेशन जो धीरे धीरे सुर की शक्ल ले लेती है? कभी कभी एक गाना किसी डायरी के आधे जुमले से शुरू होता है, कभी किसी बस राइड से, कभी हार्ट ब्रेक से, और कभी सिर्फ एक रैंडम वॉइस नोट से जो रात के 3 बजे रिकॉर्ड किया हो। हम जब कोई फिनिश सॉन्ग सुनते हैं तो हमें सिर्फ उसका फाइनल वर्जन नजर आता है, बट वी नेवर थॉट अबाउट द काउंटलेस आवर्स दैट गो बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दैट सॉन्ग। आज की कॉन्वर्सेशन मेरे लिए पर्सनली भी बहुत खास है, बिकॉज एज समवन जो खुद म्यूजिक को सीख रहा है, लिख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है, मुझे हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती है कि स्टूडियो के अंदर असल में होता क्या है। हाउ डज इमोशन बिकम साउंड? हमारे इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत खास मेहमान। आज हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तानी म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर एंड वेरी क्रिएटिव माइंड से एड्रियन डेविड इमैनुअल। से एड्रियन सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि फीलिंग्स को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करते हैं। उनका काम मॉडर्न प्रोडक्शन और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के दरमियान एक बहुत खूबसूरत बैलेंस क्रिएट करता है। से एड्रियन इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड मोस्ट ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग्स, और अगर मैं अपने पर्सनल फेवरेट की बात करूं तो इट वुड मोस्ट डेफिनेटली बी द ओएसटी ऑफ वो पागल सी। से एड्रियन स्टार्टेड ऑफ हिज जर्नी विद द इनॉग्रल सीजन ऑफ नेस्कैफे बेसमेंट एज ए मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, और उसके बाद आपने अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन की जर्नी सर शराज उप्पल के साथ शुरू की। शुरू ही से सर मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, लाइक फरहान सईद, शफकत अमानत अली, सप्तान खालिद एंड मेनी मोर। Sir Adrian has composed and produced music for TV, dramas and films, including the most recent Love Thee song. So without any further ado, let me hand over the mic to our very special guest, Sir Adrian David.
3: Kya haal?
2: Sir, bilkul theek, aap kaise hain sir?
3: Great, Adrian. So good to have you. I mean, so good to see you after, I mean, you're having me.
2: Yes,
3: so good to see
2: it's,
3: you.
2: It's a lovely opportunity aaj to have you, sir, here, because I've wanted to have you on the show. I've wanted to have this conversation with you. और प्रोडक्शन आपको सिंस ओवर द फोन कॉल तक ये पता ही है, आई हैव स्टार्टेड
3: डूइंग इट। यू हैव बीन बगिंग मी सिंस अ व्हाइल। या
2: सो जस्ट टू नो मोर, एंड पर्सनली ये मेरे लिए एपिसोड बहुत फायदेमंद हो गया, आई एम श्योर। तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। एंड सर,
3: अच्छा मैं पहले ना एक एयर क्लियर कर दूं कि मैंने उठते ही कहा ना सो गुड टू हैव यू।
2: यस,
3: उसकी एक रीजन ये है कि हम ये जहां कर रहे हैं ना, ये जगह मेरे लिए घर है, क्योंकि आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ this university, then I've taught in मैं business faculty का student था,
2: right?
3: But then I taught in this faculty,
2: okay.
3: Right? For good 2 years, it's like homecoming.
2: So for me, you're an alumni too.
3: Absolutely,
2: an alumni, a teacher, absolutely.
3: And then we had when we were studying here. I mean, we used to bug your dad the way you bug me, right? So वो repo जो है वो तब से चली आ रही है, वो एक relation तब से चला आ रहा है,
2: right?
3: और I mean, it's so good to be here and again talking to you on this platform.
2: I'm so happy to hear that, sir. Sir, if I just dive right into it, तो सबसे पहले, like first and foremost, where does a song start? Like उसकी beginning किस चीज से होती है? Does it start with the lyrics? Does it start with the melody? Quick chords? मतलब all in all, what is the point where you think कि हाँ अब एक गाना start हुआ है?
3: यार देखो, गाना start होता है emotion से,
2: right?
3: ठीक है? It's neither the lyrics, not the melody, nothing else. It starts with an emotion, right? दो तरीके होते हैं, हम दोनों चीजों को साइड बाय साइड लेके चलेंगे. एक है कि यू आर अ कमर्शियल प्रोड्यूसर एंड यू आर प्रोड्यूसिंग फॉर अदर आर्टिस्ट्स और कंपनीज और से फिल्म्स और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है. दूसरा तरीका होता है कि वेयर यू आर प्रोड्यूसिंग म्यूजिक फॉर योरसेल्फ और यू आर मेकिंग म्यूजिक योरसेल्फ, यू आर मेकिंग कॉम्पोजिशंस, यू आर डूइंग व्हिच इवेंचुअली ईदर गेट सोल्ड और यू रिलीज देम एज सिंगल्स, राइट. तो जब तो यू आर डूइंग इट फॉर अदर पीपल तो दे कम अप विद द ब्रीफ, राइट. एंड over the years you have to train yourself in a way ke when a certain person comes with a certain brief, so obviously art in any form is portrayal of emotion and that is exactly where I said ke gana emotion se shuru hota hai, right. to aapko basically you have to train yourself in a way ke aapne apne aap ko us emotion mein leke aana hai and then automatically things start happening from there on, right. jahan tak aap apna kar rahe ho to apni creation mein bhi ya to aap apne aap ko kai dafa टारगेट्स देते हो, राइट. कि यार अच्छा मैंने ना दो गाने बहुत एनर्जी वाले बनाए हैं, दो गाने मैंने रोमांटिक बनाए हैं, नाउ आई नीड अ सैड सॉन्ग से. You give yourself targets, right? दूसरी चीज होती है जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं आमद, राइट. आमद तो बेटा किसी भी टाइम किसी भी चीज की हो सकती है. इट कैन स्टार्ट विद अ लाइन एज इन लिरिक, इट कैन स्टार्ट विद अ मेलोडी. अभी यू सेड ना कि goes from a recording on your probably a voice note on your phone, right. कई दफा क्या होता है कि आपको जैसे OST that you talked about is your favorite OST.
2: Yes.
3: I did not come up with the melody for that, right. I had this line in my mind के अखियां नू तेरी दीद दी पना चाहिए. And then I came up with the melody about it. Somehow I liked the thought. तो जहाँ बात है कि गाना lyric से शुरू होता है या melody से, it can start with either. It can start with कई दफा क्या होता है जैसे मैंने when I did Kashmir beats, तो मैंने उसमें एक गजल की. अब वो गजल पहले से लिखी हुई थी, so I composed that गजल,
2: right.
3: Mostly क्या होता है कि I come up with the melody. And then I get a lyricist to write on it.
2: Right.
3: कई दफा ये होता है कि when you're making the melody, तो आपको एक line भी आ जाती है साथ ही. And then you ask the lyricist to keep that line in the song because that's the original emotion and the idea.
2: That's the original thought.
3: That's the original thought, right? और आप basically चूंकि it's a portrayal of emotion, तो आप basically जो भी बंदा जिसको भी आप direct कर रहे होते हैं, someone who's writing the song, और if you have written it and you're asking someone to co-compose it with you say, तो आप उसको कहते हो कि यार इस मूड में रहना है, ठीक है. तो it can again coming back to your question, it can either start, it can work either ways. इंडस्ट्री वाइज क्या होता है, इंडस्ट्री वाइज पुराने जमानों में चूंकि डिफाइंड रोल्स थे, ठीक है. आगे आई प्रोबेबली विल गेट इनटू द कन्वर्सेशन तो आई टेल यू इन डिटेल, बट पहले डिफाइंड रोल्स होते थे. लिरिसिस्ट होता था, वो गाना लिखता था जाके. फिल्म डायरेक्टर एक लिरिसिस्ट के पास जाता था. हमारे पेरेंट्स गए, हमारे इरा का जो म्यूजिक है वो ज्यादातर डिफाइंड है फिल्म म्यूजिक से,
2: right.
3: तो कई दफा डायरेक्टर्स जाते थे, वो लिरिसिस्ट से लिरिक्स लिखवा लेते थे कि हमें ये बात चाहिए इस जगह पे. एंड देन दे यूज्ड टू गो टू म्यूजिक कंपोजर्स कि भाई इसके ऊपर धुन बना दो,
2: ठीक है. तो वो सारी चीज जो थी वो डिफाइंड थी,
3: डिफाइंड थी
2: एक बंदे से दूसरा, दूसरे से तीसरा.
3: अब चूंकि एक वर्ड आ गया है जिसे आप बहुत सुनते होंगे, सिंगर सॉन्ग राइटर, ठीक है. अब जो सिंगर है वो ही सॉन्ग राइटर भी है, वो ही प्रोड्यूसर भी है, वो ही कंपोजर भी है. तो इस चीज में ईदर वन कैन हैपन. यू कैन ईदर मेक द मेलोडी फर्स्ट. आजकल ज्यादातर मेलोडी पहले बनती है, देन लिरिसिस्ट कम्स इन. ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आजकल. पुराने दौर में पहले लिरिक्स लिखे जाते थे और फिर मेलोडी बनती थी,
2: राइट.
3: मेलोडी लिरिक गाइडेड होती थी मेलोडी, अब मेलोडी गाइडेड होते हैं लिरिक्स,
2: राइट. सो द कंट्रास्ट हैज चेंज्ड, इट हैज
3: शिफ्टेड, इट हैज इनवर्टेड बेसिकली.
2: आपने सर अभी एक सॉन्ग राइटर वाली जो बात की है, वील गेट इन टू दैट कॉन्वर्सेशन. बिफोर दैट लेट्स जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड लेट्स गेट इन टू दैट आफ्टर द ब्रेक.
3: Done.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ होरब शम्स, आपका होस्ट। यू आर लिसनिंग टू एफ एम 92.6 यूसीपी की दुनिया और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुर कहानी। हमारे साथ गेस्ट हैं सर एड्रियन डेविड। और सर, हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सॉन्ग राइटिंग और सिंगर सॉन्ग राइटर वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। सर, एक सॉन्ग राइटर, एक प्रोड्यूसर, एक लिरिसिस्ट, इन सारों में जो लिंक है और जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आके फेड हो जाता है, कहाँ पे वो मर्ज हो जाता है? What are the basic differences and what are the basic roles of all these different people?
2: देखो, जो सॉन्ग राइटर है ना, पहले ही होता था, जैसे मैंने पहले बताया कि डिफाइंड रोल्स थे, राइट? अ लिरिसिस्ट यूज्ड टू बी एक शायर होता था,
1: राइट?
2: ठीक है। और बिकॉज पुराना दौर एक बड़ा लिटरेरी दौर था, लिटरेचर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड लिटरेचर, ठीक है, हम वो पढ़ते हैं ना, फैज अहमद फैज साहब, अहमद फराज साहब, ठीक है। तो इवन वेस्ट में भी हम एमिली ब्रोंटे पढ़ते हैं, शार्लेट ब्रोंटे पढ़ते हैं, ठीक है, लिटरेचर बड़ा रिच था, राइट? तो अदब में पीपल यूज टू नॉट मिंगल अराउंड विद ईच अदर्स, उनकी जो वो थी ना, डोमेन्स थी, वो बड़ी क्लियर थी। एक शायर शायरी होता था,
1: ठीक है,
2: एक कंपोजर जो धुन बनाता है वो कंपोजर ही होता था, एक म्यूजिक डायरेक्टर ही होता था, राइट?
1: राइट।
2: मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ एवोल्यूशन का, क्योंकि एवोल्यूशन ना हो तो वी आर नथिंग विदाउट एवोल्यूशन, वी आर सेल्फ्स आर प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, राइट? तो पॉइंट इज के लोगों ने कोशिश की कि यार मैं खुद भी तो गाना लिखूं, एक इमोशन है जो मेरे में है, राइट? तो मैं उसको क्यों ना पोर्ट्रे खुद करने की कोशिश करूं। तो उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की अबाउट के यार शायरी होती कैसे है,
1: राइट?
2: उसके क्या पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने रखना होता है जहन में, और वो सोच के उन लोगों ने गाने लिखने
1: काफी रदीफ
2: बहर क्या होनी चाहिए, चीजें क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ देख के उन्होंने शायरी करनी शुरू कर दी, ठीक है। उनमें से कुछ ने बहुत अच्छी की, कुछ बस सीखते रहे और वक्त के साथ अच्छे हो गए, राइट? तो जब एक सिंगर अपना गाना खुद लिखता है ना, ठीक है, तो वो सिंगर सॉन्ग राइटर होता है, राइट? वो अपना गाना कंपोज भी जब खुद करता है और लिखता भी खुद है और गाता भी खुद है,
1: ठीक है,
2: तो वो सिंगर सॉन्ग राइटर,
1: वन मैन शो जब हो जाता है
2: तो वो सिंगर सॉन्ग राइटर होता है, ठीक है,
1: राइट?
2: अच्छा, कुछ लोग सिंगर सॉन्ग राइटर प्रोड्यूसर्स भी हैं, राइट? वो गाने सिर्फ वो बनाते ही नहीं है, गाना देखो ना, गाने में क्या क्या चीजें हैं, गाने में उसके वर्ड्स हैं जो के लिरिक्स हैं, गाने में तर्ज है जो के कॉम्पोजिशन है,
1: ठीक है,
2: ठीक है, फिर गाने के अंदर म्यूजिक है उसका, और फिर गाने में वोकल्स हैं, राइट?
1: राइट,
2: हमारे यहाँ, ठीक है, हम गाना इंस्ट्रूमेंटल हो तो हम उसे गाना ही नहीं मानते। वेस्ट में कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारा गाना है और हम जैसे लोग उसमें वोकल ढूंढ रहे होते हैं, बट दैट इज ऑल्सो सॉन्ग ना, आई मीन देयर कैन बी अ सॉन्ग दैट डज नॉट हैव वोकल्स, इट्स स्टिल अ सॉन्ग, राइट? जैसे हम बिथोवन की सिम्फनी सुनते हैं, दे आर सॉन्ग्स,
1: दे आर फुल सॉन्ग्स,
2: दे आर कंप्लीट सॉन्ग्स, बट उनमें वोकल नहीं है, तो हम उनको,
1: वो सारा पियानो है,
2: ठीक है। खैर, एनीवेज, तो इसमें ये है कि पहले जमाने में लिरिक्स लिखे जाते थे, उसके ऊपर धुन बनती थी, फिर म्यूजिक डायरेक्टर या म्यूजिक अरेंजर वो होता था जो ये बताता, अब आपने एज अ कंपोजर कहा कि मुझे इस गाने में से वायलिन का इंट्रो चाहिए, तो म्यूजिक डायरेक्टर ने इस चीज को नोट कर लिया। अब उस वायलिन पे बजना क्या है, राइट? इट इज अ वेग स्टेटमेंट ना कि मुझे शुरू में वायलिन चाहिए, वायलिन बजाएगी क्या, ये म्यूजिक डायरेक्टर देखता था या म्यूजिक अरेंजर देखता था,
1: राइट?
2: म्यूजिक डायरेक्टर स्लैश म्यूजिक अरेंजर,
1: ओके,
2: ये देखता था, राइट? जिसको आज हमने प्रोड्यूसर का नाम दे दिया है,
1: ओके,
2: राइट? तो प्रोड्यूसर्स ने भी आजकल, प्रोड्यूसर कैन आल्सो बी समवन हु इज सेइंग कि यार मुझे ये चीज चाहिए, एंड म्यूजिक अरेंजर आके एक्चुअली काम करता है, राइट? तो ये रोल्स थे डिफाइंड,
1: ठीक है।
2: अब चूंकि पीपल आर डूइंग एवरीथिंग देमसेल्व्स, बूटस्ट्रैपिंग कर रहे हैं, खुद करते हैं, तो वो सिंगर सॉन्ग राइटर कहना आसान है कि वो अपना गाना लिखता भी खुद है, धुन भी खुद बनाता
1: है, सॉन्ग राइटर भी है,
2: एंड इट इज वेरी गुड एज वेल। पता है क्या, देखो चूंकि हमने पहला सवाल यही किया था कि म्यूजिक एक इमोशन है, एक आर्ट है, आर्ट एक इमोशन है, पोर्ट्रेयल ऑफ एन इमोशन, राइट? तो मेरे इमोशन को मिरर से बेहतर तो कोई फील नहीं कर सकता,
1: ऑफ कोर्स,
2: और तुम्हारे इमोशन को तुमसे बेहतर कोई फील नहीं कर सकता।
1: True.
2: तो अगर तुम्हें एक चीज की थोड़ी सी नॉलेज है ना, तो तुम अपने इमोशन को अपनी ऑडियंस तक बेहतर ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ, उसमें ये कि इसला ले लो किसी शायर से, इसला ले लो। हाँ, किसी शायर का, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि मैंने एक दफा, एक और मेरा ओएसटी है कुछ ना कहना, उसके लिरिक्स आए, वो स्क्रिप्ट मुझे इतना खूबसूरत लगा कि मुझे लगा कि हाँ यार, इस इमोशन को मैं धुन से पोर्ट्रे कर सकता हूँ, राइट, आई वांटेड टू डू इट। कश्मीर बीट्स की जो गजल थी उसका भी ये था कि वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, मेरे एक शायर दोस्त थे, उन्होंने मुझे वो स्क्रिप्ट भेजा और मैंने उसको पढ़ा, एंड आई सो रिलेटेड टू दैट इमोशन दैट आई कंपोज्ड ऑन इट, राइट। तो आपका इमोशन आपसे बेहतर तो कोई पोर्ट्रे नहीं कर सकता, इन वन ऑड केस कि जहाँ पे आप किसी ने लिखा ही इतना अच्छा है कि यार आप कहते हो हाँ। ये मैं बात कर रहा हूँ इफ यू नॉट वर्किंग फॉर अ क्लाइंट।
1: Okay.
2: अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उसने तो आपको बांध दिया ना,
1: फील दिया कि यही करना है वही करना,
2: ठीक है। अब चूंकि इंडिपेंडेंट म्यूजिक का दौर है, तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो इसी तरह है कि तुम्हारा जो दिल कर रहा है तुम वो बना रहे हो,
1: ठीक है,
2: ठीक है। इसलिए तुम देखो कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक में पोर्ट्रेयल ऑफ इमोशन ज्यादा है, ठीक है। जो क्लाइंट का म्यूजिक है उसमें एक डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसमें सिचुएशनल म्यूजिक है,
1: वो एक सिचुएशन है, उसने इमोशन बना दिया, अब आपने उस इमोशन को पहले फील करना है और फिर उस चीज में काफी चीजें लॉस्ट हो जाती हैं।
2: यार लॉस्ट देखो डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को ट्रेन कैसे किया एज ए म्यूजिशियन। लॉस्ट किसी भी फॉर्म में लॉस्ट, देयर नॉट लॉस्ट, इट्स जस्ट दैट यू आर बाउंड,
1: ओके,
2: यू आर बाउंड टू फील अ सर्टेन वे। प्रोबेबली आई हैव हैड अ वेरी गुड डे, आई एम वेरी चीयरफुल, बट माय क्लाइंट कम्स इन एंड आस्क्स मी टू मेक अ सैड सॉन्ग, राइट। नाउ आई डीप डाउन इनसाइड आई एम नॉट फीलिंग सैड, बट आई हैव टू ट्रेन माय म्यूजिकल एबिलिटी टू अ वे दैट इवन इफ आई एम नॉट फीलिंग सैड आई हैव टू टेक माय सेल्फ टू दैट जोन एंड देन क्रिएट समथिंग दैट फिट्स द सिचुएशन।
1: Okay.
2: But if I'm doing independent music, if I'm today feeling very cheerful, very happy, I'd probably make a happy song. Right?
1: If you're doing it for yourself.
2: Yeah. If I'm doing it for myself and if I'm doing independent music, I'll rather make a happy song. But if you're working on a brief, if you're working for a client, what you have to do, you're a little bound. But it all depends on how you've trained yourself. If you've trained yourself to an extent jahan you can easily take yourself to in that zone.
1: Right.
2: That's good for you.
1: So when you arrange something, ek aapka music ban gaya, you've composed something. And this is a little moving on to the next question. Ke jab aapne kuch bana liya, when do you decide ke am I using digital instruments or am I using traditional instruments? Like for example, guitar jo hai. Guitar aap kisi guitarist se bhi bajao. सकते हैं, बट वो आप डिजिटली भी मीडी पे बजा सकते हैं। सो वेयर डू यू डिसाइड के क्या चीज बेटर है एंड क्या चीज एक ट्रेडिशनली करवानी चाहिए या फिर वो डिजिटली भी उतना ही काम कर देगी?
2: देखो मेरी इस चीज के ऊपर टेक बड़ी सिंपल है। अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, एनालॉग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो लाइव ही बजने चाहिए,
1: ठीक है।
2: डिजिटली उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया और फिर आपने एक चीज और देखनी है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी आपके जितना भी आपका साउंड डिजाइन है, साउंड डिजाइन इज द कंप्लीट म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग, उसमें उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे क्रिकेट टीम होती है ना, तो क्रिकेट टीम में 12th मैन भी होता है, वो पानी भी पिलाने वाला चाहिए होता है, राइट। तो आपने उस हिसाब से आप यू कैन सी के यार अच्छा ये एक चीज है, ये मुझे सिर्फ वाइब के लिए चाहिए, इट्स नॉट गोना बी वेरी अपफ्रंट इन द मिक्स, सो आई कैन टेक अ चांस दैट आई कैन यू नो आई कैन डू इट डिजिटली, राइट। बट इफ देयर इज समथिंग दैट इज इन द फोरफ्रंट ऑफ योर मिक्स and it can be done analog, analog is better because obviously the amount of feel that you have, you have a feel of a player in it, there's a realistic feel in it, right. अच्छा, अब जहां तक बात है सिंथ की या इन चीजों की, जो टोन्स ही डिजिटल टोन्स है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट से टोन बने हैं, वो तो आपको डिजिटली ही करने हैं, ठीक है। उसमें आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप उनके हार्डवेयर ले लो, तो या सॉफ्टवेयर से आप उन्हें सॉफ्टवेयर एमुलेशन से उन्हें कर लो,
1: तो वो हम किसी भी तरह से जस्ट डिपेंड्स के किसी किस चीज की मिक्स में कितनी
2: इम्पोर्टेंस है, एब्सोल्युटली, ठीक है। और ये भी आप देख रहे हो कि आपने आपका गाना चलना किस मीडियम पे है,
1: ठीक है,
2: राइट। जैसे आप डीवीसीज कर बनाते हो, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स बना रहे हो, पहले डीवीसीज होती थी, अब डिजिटल है, डीवीसीज है, राइट। तो एक इंसान ने एक चीज सुननी है एज एक इश्तेहार के तौर पे, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट है, और उसने मोबाइल पे मोस्ट प्रोबेबली उसे स्किप कर देनी है,
1: right? तो उसमें मेहनत की इतनी, आई थिंक
2: तो वहां पे उन केसेस में यू डोंट पुट इन द एफर्ट ऑफ कॉलिंग अ पर्सन. You try to, you know, achieve it digitally.
1: Calling that person, paying that person.
2: Obviously, obviously, क्योंकि उन चीजों के उतने it comes down to budgets as well. अच्छा, कई दफा कुछ advertisements के budget बहुत अच्छे होते हैं. But you still don't feel the need of calling a person and getting it played when it can be done. In a way, जो के क्योंकि एक इश्तिहार है यार. Let's be honest.
1: It's just going to be skipped.
2: How many people have you heard जो इश्तिहार में music सुनते हैं? क्योंकि इश्तिहार is not supposed to make you concentrate on the music. It is supposed to make you concentrate on the product. That's being sold. तो अगर मेरा music A R Rahman type music हो जाएगा, ठीक है? तो कैसे आप product तो नहीं खरीदोगे, आप तो मेरा music खरीद रहे हो. Right? So you have to have that business sense as well कि यार मैं जो भी बना रहा हूँ उसमें highlight product है, ठीक है? जब आप गाना बना रहे हो तो गाने में आपने यही देख रहे हैं कि किस चीज की इम्पोर्टेंस कितनी.
1: So it's it comes down to importance, कहाँ आपका music use होना है, everything.
2: Absolutely. And then I would clear this air. बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि सब कुछ डिजिटली हो जाता है. बहुत सी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है? बहुत एडवांसमेंट्स हो गई हैं, बहुत रियलिज्म आ जाता है डिजिटली, बट वो एनालॉग की एक फील है जो नहीं, जो के रेप्लिकेट आज तक तो नहीं हो सकी. आगे द वे वी आर प्रोग्रेसिंग एज एंड एज आई सेड कि आई एम अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ एवोल्यूशन. यू नेवर नो, वी
1: एआई की एवोल्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, तो वी नेवर नो के एआई भी इतना स्ट्रांग
2: नहीं. देखो, एआई को तुम डिजिटल नहीं कह सकते हो कि वो डिजिटली, यू आर नॉट प्लेइंग इट, ठीक है? एआई भी ह्यूमन डेटा को लर्न करता है और फिर वो रिप्रोड्यूस कर रहा है उसको.
1: इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू,
2: इट्स नॉट डूइंग समथिंग न्यू.
1: वो पुराने को यूज करके किसी और पुराने के साथ मिक्स करके. हियर वी विल टेक अनदर ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद हम इसी कॉन्वर्सेशन को वापस कंटिन्यू करते हैं.
2: डन.

0: University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया. प्रोग्राम है सुर कहानी और मेरे साथ बैठे हैं सर एड्रियन डेविड इमैनुअल. सर, हमने अभी बात की डिजिटल और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, उनकी मिक्सिंग के बारे में. मूविंग ऑन, मिक्सिंग और मास्टरिंग जब हम बात करते हैं तो बेसिक डिफरेंस उनमें क्या है और बेसिकली है क्या मिक्सिंग मास्टरिंग?
2: देखो, जब आप गाना बना लेते हो ना एक पूरा, आपके पास उसका म्यूजिक आ गया, सारे उसके एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं. अब आपने उन चीजों को अरेंज करना है. देखो, एक गाना जो है एक सोनिक फील्ड है, स्टीरियो फील्ड, राइट? और स्टीरियो फील्ड ऐसे ही है जैसे एक कमरा, राइट? अब उस कमरे में तुमने चीजों को, अब तुमने भर लिया, एक दफा सामान आ गया,
1: ठीक है.
2: आप घर शिफ्ट करते हो ना, घर का एक सामान आप एक जगह पे ला के रख देते हो,
1: ठीक है.
2: अब उस कमरे को जब सेट करते हो ना, दैट इज मिक्सिंग,
1: राइट?
2: ठीक है. अच्छा, अब मास्टरिंग क्या है? मास्टरिंग है कि अब चीजें सेट हो गई,
1: ठीक है.
2: अब नाउ यू bring a painting, you put a painting, that's the final
1: finishing touches.
2: Final finishing touches are done in mastering and gaane ki loudness dekhi jati hai.
1: Okay.
2: Mix mein basically चीजों को क्लीन किया जाता है.
1: Okay.
2: उन्हें अपनी अपनी जगह पे रखा जाता है. हाँ, लेकिन उनको वो शाइन कैसे होती है, वो फाइनल टच क्या है, दैट इज मास्टरिंग, राइट? तो गाना क्लियर और क्लीन साउंड करना शुरू हो जाता है मिक्स के बाद,
1: ठीक
2: है. बट वो एक जान और एक पावरफुल प्रोडक्ट बनता है मास्टरिंग के बाद.
1: हम अपनी एपिसोड को एंड करेंगे आज की. एंड सर, इट हैज बीन अ वंडरफुल एपिसोड. आपसे मुझे पर्सनली सीखने को बहुत कुछ मिला है. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स, फॉर मोर थिंग्स टू लर्न ऑन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया. मैं हूँ आपका होस्ट हुरब शम्स. दिस इज रेडियो FM 92.6 यूसीपी की दुनिया. आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर कहानी. खुदा हाफिज़.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifee.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: सूफी सिंग्स हू दैट विच इज दैट विच वॉज दैट विच विल बी।
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं वो एक अहद है, एक दौर है पूरा।
1: 20वीं सदी के आखिरी हिस्से को अपनी आवाज के सहर में जकड़ने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आवाज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनी। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आवाज का जादू किसी की रूह पर असरअंदाज होने के लिए किसी मखसूस जुबान का मोहताज नहीं। साज और आवाज से नुसरत की रूह और दिल की हम आहंगी के बायस सुनने वाले उनकी आवाज के सहर में खो जाया करते थे।

0: तो ये अल्लाह की अता होती है और गिफ्ट, गॉड गिफ्ट होता है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो अच्छी लग रही है और लोग उसे प्यार कर रहे हैं।
1: उस्ताद नुसरत फतेह अली खान कवाली के मैदान में कदम रखते ही जान चुके थे कि कवाली को जिंदा रखना है तो कुछ मुनफरिद करना होगा। उन्होंने सरगम और लयकारी का इंतहाई खूबसूरत इस्तेमाल करके कवाली को एक ऐसी शक्ल दे दी कि सुनने वाला उसके सहर में जकड़ा चला जाता। कवाली जुग्राफियाई, लसानी और मजहबी हदूद की कैद से आज़ाद हो गई।
2: मुझे बचपन से यही शौक था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा नया अंदाज सीखूं जिससे मेरी एक अलग पहचान हो।

जब भारत के बड़े बड़े मौसीकारों ने खान साहब को कॉपी करना शुरू किया तो बिलाआखिर वो खुद मैदान में उतर आए। माइकल ब्रूक के साथ कामयाब तजुर्बात के बाद रेमिक्स म्यूजिक स्टार बाली सागू के साथ भी फ्यूजन किया, जिसने बिजनेस के रिकॉर्ड कायम किए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is
1: 92.6.
2: जी तो सामिन, हम वापस आ चुके हैं। उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा अभी तक। सर, अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे प्रेसिडेंशियल निज़ाम और पार्लियामेंट्री निज़ाम पे। सर, अभी मौजूदा वक्त में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सदर के पास जमहूरी निज़ाम में रहते हुए क्या क्या अख्तियारात हैं?
3: देखें, 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सदर के पास नॉमिनल पावर्स रह गई हैं, यानी कि वो एक टाइटलर हेड के तौर पर है। जिस तरह से ब्रिटेन में ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट के वजूद के बाद जो है वो जो क्वीन है या किंग है उसके पास नॉमिनल पावर्स रह गई हैं। जितने भी अहम मामलात हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट्स जो हैं वो डिसीजंस लेती होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में हुआ कि जितने भी अहम मामलात हैं उनके ऊपर जो है वो हमेशा बिल जो है वो इनिशिएट होता है पार्लियामेंट से, वो फिर साइन होता है, उस पर डिबेट होती है पार्लियामेंट में, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो दोनों हाउसेस से उस बिल को मंजूर करते हैं, फिर वो बिल जो है वो सदर पाकिस्तान के पास जाता है फाइनल सिग्नेचर के लिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सदर जो हैं वो उसमें कुछ तब्दीली जो है वो रिकमेंड करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो बिल को उसी तरह से मंजूर कर देते हैं। तो एक उनके पास सबसे बड़ा इख्तियार ये है कि जब बिल जो है वो लॉ बनने लगता है तो उस प्रोसेस की जो कंप्लीशन है वो विद द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होती है। लेकिन इसमें भी ऐसा हो सकता है कि अगर दो रेपिटेशंस के बाद बिल जो है वो सदर पाकिस्तान से अप्रूव नहीं भी होता और हाउस उसको दूसरी तीसरी दफ़ा जो है वो अप्रूव कर देता है तो वो बिल लॉ बन जाता है। दिस शोज़ कि आपकी जो पार्लियामेंट है इवन वो लॉ बना सकती है अगर सदर का उस पर सिग्नेचर भी ना। उसके अलावा सदर के पास जो इख्तियारात होते हैं वो एक सबसे अहम अख्तियार है जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता होता है। ऑर्डिनेंस जो है वो एक एमरजेंसी लॉ होता है जो कि उस वक्त बनाया जाता है जब पार्लियामेंट इन सेशन नहीं होती और किसी अहम मामले के ऊपर आपको लॉ मेकिंग की ज़रूरत हो, तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो थोड़े अरसे के लिए जो है वो लागू होता है। उसके बाद अगर उसको पार्लियामेंट रिकग्नाइज या एक्नॉलेज नहीं करेगी तो वो लॉ नहीं बन सकेगा। तो प्रेसिडेंट के पास दूसरा सबसे बड़ा अख्तियार ये है कि वो इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जो कि उस वक्त के लिए लागू होता है। जो तीसरा सबसे बड़ा अहम जो अब उसके पास इख्तियार होता है वो है पार्डन या रिप्रीव का, यानी कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसको कोर्ट्स की तरफ से सज़ा हुई हो वो सज़ा जो है वो डेथ पेनल्टी तक भी हो सकती है, उसकी एक एप्लीकेशन जो है वो सदर पाकिस्तान को अगर फॉरवर्ड की जाए और उसमें वो माफ़ी की दरख्वास्त करे सदर को, तो सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो उसको माफ़ी दे देता होता है। इसको पार्डन या रिप्रीव कहा जाता है, यानी कि आपके शहरियों में से कोई एक शहरी जो है अगर वो किसी गुनाह का किसी जुर्म का मुर्तकब हुआ है तो उस जुर्म में जो है वो जब उसे सज़ा हुई है उसकी माफ़ी देना जो है वो सदर के इख्तियार। इसके अलावा ये है कि जब खारजा अमूर डिसाइड हो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी सदर का किरदार होता है। जब सेरेमनीज हो रही होती हैं या हेड ऑफ स्टेट आपको विजिट कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपने उन्हें वेलकम करना होता है, तो ये सेरेमोनियल्स जो हैं वो कुछ रोल्स होते हैं जो सदर को परफॉर्म करने होते हैं।
2: सर, अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी कि जमहूरियत निज़ाम में क्रैक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। सर, वो किन किन इंस्टीट्यूशन की आप बात कर रहे थे कि जिनका रोल बहुत अहम है?
3: देखें, दो तरह के इदारे होते हैं किसी भी एक रियासत में या जमहूरियत में। वो दो इदारे जो हैं एक गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहे होते हैं पैरेलल, जो कि उतने ही मजबूत होते हैं जितना के सरकारी इदारे होते हैं। क्योंकि हमारा फोकस जो है वो रियासत के ऊपर है तो हम सरकारी इदारों की बात कर लेते हैं। हकूमती इदारे जो हैं वो थ्योरेटिकली तो जो है वो तीन इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, जो कि एक रियासत को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इज टू फॉर्म लॉज, वो कवानीन बनाते हैं और उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए आपके पास एक दूसरा इदारा मौजूद है जिसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहा होता है, जिसको एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है। अब एग्जीक्यूटिव जो है उसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक ब्रॉडर सेंस में और एक नैरो सेंस में। ब्रॉडर सेंस में फ्रॉम लाइक प्राइम मिनिस्टर टू पटवारी जो है वो आपके एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है। नैरो सेंस में ये किया जाता है कि इसमें डिस्टिंक्शन की गई है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर और होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और होते हैं। एग्जीक्यूटिव स्टाफ वो होता है जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वो होता है जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होते हैं। सो बुनियादी जिम्मेदारी जो है यहाँ पे वो लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले इदारों पे आती है जिन्होंने इन्फोर्स करना है। लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, उसके अलावा मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद द सिविल मैटर तो आपको लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स जैसे इदारों से सामना करना पड़ेगा, और अगर तो आप जो हैं वो किसी क्रिमिनल उससे डील कर रहे हैं तो आपको पुलिस और इस जैसे इदारों, दे ऑल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो तीसरा और सबसे अहम इदारा है जमहूरी मुल्क में वो है जुडिशरी का, जिसे अदलिया कहा जाता है। इसका बुनियादी काम कानून को नाफिज होने के प्रोसेस के दौरान जो इंसाफ है उसके तकाजों को मद्देनज़र रखना है, और साथ ही साथ जो है वो कानून की इंटरप्रटेशन करना है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कवानीन जो हैं वो बड़े एम्बिगुअस होते हैं, जब वो बन के आते हैं तो उनकी ट्रांसलेशन नहीं होती, जिसमें जो जुडिशरी है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये बनती है जजेस अपनी बसात और अपनी प्रूडेंस के मुताबिक जो है वो इंटरप्रटेशन करते हैं लॉ की, और उसको किसी स्पेसिफिक केस के ऊपर लागू करते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कानून मौजूद ही नहीं होता, तो उसमें जो है वो इक्विटी के प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए वो इंसाफ मुहैया करते हैं। तो हकूमती इदारों की अगर बात की जाए तो यही तीन इदारे हैं जो कि एक रियासत को चलाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। आज की जो मॉडर्न स्टेट है उसमें ये कहा जाता है कि एक चौथा इदारा भी इस्टेब्लिश हो गया है जिस पे उतनी ही जिम्मेदारी आयद है जितना इन तीन सरकारी इदारों पे है, और वो मीडिया है। मीडिया को भी उतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है एक जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए जितना ये तीनों इदारे हैं।
2: जी सर, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। सर, हारजा पॉलिसी, एक जमहूरी रियासत को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को अपनी हारजा पॉलिसी कैसी बनानी चाहिए ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी अपना रिलेशन ठीक बना सके और अपनी अवाम के साथ भी अपना जमहूरी प्रैक्टिस कर सके?
3: देखें, पहले इसके कि हम फॉरेन पॉलिसी या खारजा पॉलिसी जो है उसका आउटकम्स को देखें कि कितनी इफ़ेक्टिव वो पॉलिसी हो सकती है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस तरह का है, इस प्रोसेस में कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से मुहरकात हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी क्या होगी। बहुत से स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि इसमें आपके इलेक्टेड ऑफिशल्स के साथ साथ आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आपका जो ब्यूरोक्रेसी है, आपका इवन के जो रोल ऑफ पर्सनैलिटीज़ है, यानी कि आपकी खारजा पॉलिसी को ट्रांसलेट करने के लिए जो आपका इलेक्टेड स्टाफ है या जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो किस तरह से सोचते हैं, उनका सोचने का मायार क्या है। क्योंकि अब तो जो है वो 1960s के बाद ऐसा हुआ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने और न्यूरोसाइंस ने ये देखना शुरू किया कि एक इंसान कितना रैशनल सोचता होता है और कितना इरैशनल सोचता है। क्योंकि रियासत की जो खारजा पॉलिसी है वो अफराद बना रहे होते हैं, फ़र्द जो हैं उसका हिस्सा होते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक फ़र्द जो है वो सोचता कैसे, उसके जहन का कितना हिस्सा जो है वो मंतकी लिहाज से सोचता होता है और कितना हिस्सा जो है वो इमोशनली सोचता होता है। सो दुनिया में हमारे पास कई ऐसे खारजा पॉलिसी के आउटकम्स हैं जिनमें प्रोसेस के दौरान ऐसे अफराद जो हैं वो शामिल थे जो कि जहनी लिहाज से ज़रा इमोशनली सोचते होते थे, या उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी। अगर इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ पुटिन, रशिया की अगर हम एग्जांपल लें तो ही इज़ अ मिलिट्री मैन और वो मिलिट्री की तरह सोचता है। हाउ वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मिलिट्री मैन टू बिहेव डिप्लोमेटिकली? अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक इंसान है, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग हुई है, तो जब वो फॉरेन पॉलिसी बना रहा होगा तो हमेशा अग्रेसिव मीन्स को इस्तेमाल कर रहा होगा किसी भी मसले का हल निकालने के लिए। और एक बंदा है जिसने, या एक फ़र्द है जिसने जो है वो उसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है उसने डिप्लोमेटिक वे से जो है इन चीज़ों को हल करना है, ये एक अहम फैक्टर हो सकता है। सो प्रोसेस जो है वो ज़्यादा अहम होता है बैन अलावा ताल्लुकात में, बजाय इसके कि हम उसके आउटकम्स देखें।
2: जी तो सामिन, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ हम वापस आ चुके हैं। तो अब हम करते हैं सर से कुछ मजीद सवालात और अपने आखिरी मराहल में भी दाखिल होते हैं। सर, जमहूरियत की हम बात कर रहे थे, तो एक आम बंदा, यानी कि मैं भी एक आम बंदा हूँ, सुनने वाले भी हमारे काफ़ी आम लोग होंगे, तो सर ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुल्क की जमहूरियत कहाँ पर खड़ी हुई है और दूसरे मुल्क की जमहूरियत किस मुकाम पर खड़ी हुई है?
2: देखें, पहला जो अहम पहलू है वो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ जो इलेक्शंस हैं वो कितने फ्री एंड फेयर हो रहे हैं और वो पीरियोडिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर उसमें इलेक्शंस के दौरान या ऐसा हो कि बेजाबतगियों के कुछ इल्ज़ाम आएं या कुछ ऐसा हो कि जिसमें लगे कि जी रिजीम जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर रही, 5 साल मुकम्मल नहीं हो रहे, तो ये एक ऐसा नेगेटिव इम्प्रेशन मिलता है जैसे जमहूरी प्रोसेस में कुछ अवामिल जो हैं वो ऐसे हैं जो कि इस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं होने दे रहे। एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस लिहाज से जो है वो इफ़ेक्टिवली अपना काम कर रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि एक शहरी जो है वो अपने ख्यालात और अपने एक्सप्रेशन के लिहाज से कितना आज़ाद है अपनी राय का इजहार करने में। वो राय जो है वो नेगेटिव सेंस में नहीं हो सकती, वो किसी नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे नहीं हो सकती, वो राय ये हो सकती है कि आप इनफरादी तौर पे किसी भी सोशल इशू के ऊपर, किसी भी पॉलिटिकल इशू के ऊपर किस तरह की राय रखते हैं बगैर किसी और के सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचाए, आप उसका इजहार कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ होगी वो ये होगी कि आपके जो मुल्क है उसमें जो रूल ऑफ लॉ है, यानी कि क्या कानून जो है वो सबको एक ही तरह से देख रहा है या कानून के लिए मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ तरह का आप उनको प्रिविलेजेस मिलेंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे जमहूरी तकाजे पूरे नहीं हो रहे। क्योंकि जमहूरियत में ऐसा होता है कि रूल ऑफ लॉ होता है और कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है। चौथा जो सबसे अहम आप वेरिएबल देख सकते हैं वो ये है कि आपका प्रेस जो है वो कितना आज़ाद है अपनी जो आरा है, क्योंकि प्रेस की बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अगर तो वो ये कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और बीच में कोई ऐसी फोर्सेस नहीं हैं जो हायल हों, तो मुल्क जमहूरी होगा। अगर आपके इसके साथ साथ जो है वो मिलिट्री सबॉर्डिनेट टू इलेक्टेड ऑफिशल्स है और बहुत से इदारे जो हैं वो अपने डोमेन में रह के काम कर रहे हैं, तो मुल्क जमहूरी तस्वर होगा। अगर इनमें से कोई भी एक वेरिएबल है, जैसा कि इलेक्शंस जो हैं वो 10-10 साल नहीं हो रहे, तो फिर आप कहेंगे कि रिजीम जो है वो अथॉरिटेटिव है। जैसा कि किसी एक सियासी जमात का अगर रूल के ऊपर कब्जा है, तो फिर ये इंप्रेशन जाएगा कि जैसे रूल जो है वो अथॉरिटेटिव है या टोटलिटेरियन रूल है जिसमें टोटल कंट्रोल जो है वो एक सियासी जमात के पास है। इसके अलावा जो है अगर इलेक्शंस में लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिल रहे, तो फिर ये इंप्रेशन जाएगा कि जैसे रिजीम जो है वो अथॉरिटेरियन है या डेमोक्रेटिक नहीं। सो इस तरह के और बहुत से वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए आप असेस कर सकते हैं कि कोई मुल्क जो है वो जमहूरी है या नहीं है।
1: जी सर, बिल्कुल ठीक। सर, अमूमन हमारे लोगों में ये तासर है कि लोग पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं समझते। अगर कोई बच्चा पॉलिटिक्स पढ़ने का नाम लेता है तो कह देते हैं कि नहीं, ये हमारी डोमेन नहीं है, ये कुछ और लोगों की डोमेन है। तो सर, आपके ख्याल से हर एक बंदे के लिए या हर एक तबके के लोगों के लिए पॉलिटिक्स पढ़ना कितना ज़रूरी है?
2: देखें, हमें ये समझना पड़ेगा कि सियासत जो है वो एक सब्जेक्ट की हैसियत से, एक डिसिप्लिन की हैसियत से हमें पढ़नी चाहिए। उसकी वजूहात हो सकती हैं। हाँ, आपका मेरा इस बात के ऊपर डिबेट हो सकती है कि सियासत जो है वो एक नास्टी बिजनेस है, एक ऐसा काम है जो कि अमूमन तसव्वुर ये है कि वो अच्छा बिजनेस नहीं है और पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्ट होते हैं हर मुल्क में। तो हम इस फिनोमेनाज को क्यों पढ़ें, इन फिनोमेनाज को, और हम क्यों इन चीज़ों पर तवज्जो दें? लेकिन बात यह है कि बहुत से ऐसे फिनोमेनाज हैं जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं लेकिन फिर भी आप करते हैं। अगर हम मिसाल लें एक बायोलॉजी या बायोटेक पढ़ने वाले की, तो वो बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। अब बैक्टीरिया जो हैं वो जानलेवा भी होते हैं बाज़ दफ़ा, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि क्योंकि वो जानलेवा फेनोमेना है तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। इंसान को जो है वो हर तरह का नॉलेज जो है वो लेने की ज़रूरत है। और क्योंकि अवैल में ऐसा होता था कि इंसान जो है वो पॉलीमैथ होते थे, मतलब वो हर तरह का नॉलेज लेते थे, क्योंकि आप एक सियासी तौर पे ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं और आपका और रियासत का जो रिश्ता है वो शहरी का और स्टेट का है, तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ ए कंट्री आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रियासत आपको देने की मुतहम्मिल हो सकती है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रियासत बदले में आपसे एक्सपेक्ट करती है। सो एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने की हैसियत से आप में सिविक सेंस होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होनी चाहिए कि आप जो है ना वो कानून की पासदारी को अपने लिए वाजिब समझें या फ़र्ज समझें, और साथ ही आपको कवानीन का पता भी होना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, आपको सियासी जमातों के रोल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं।
1: सर, यूसीपी की अगर हम बात करें तो यूसीपी अपना क्या रोल अदा कर रही है पॉलिटिक्स की स्टडी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में और किस तरह से पहुंचा रही है?
2: देखें, यूसीपी में पूरा एक इदारा जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर जो है वो इसी कोशिश में है कि तमाम ऐसे तलबा जो कि इंटरेस्ट रखते हैं बैनुल अक्वामी अमूर में या सियासत में, उनको 4 साल डिग्री कराई जाए जिसको बीएस ऑनर्स कहा जाता है। और साथ ही 2 और पैरेलल प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें एमफिल इंटरनेशनल रिलेशंस है और पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस है, कि आप एकेडमिकली किस तरह से जो बैनुल अक्वामी सियासत में जो है वो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, वो तब्दीलियां किन मुहरकात की बेस पे हो रही हैं, उनमें क्या क्या पाकिस्तान का किरदार हो सकता है या एकेडमिक्स का या स्कॉलर्स का किरदार हो सकता है इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इन सियासी जो तनाजुर में तब्दीलियां हो रही हैं इनको समझने में और इनके ऊपर बात करने में। तो यूसीपी का पूरा एक डिपार्टमेंट जो है वो इसी तगोदो में है, हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स का डिपार्टमेंट है, कि किस तरह से लोगों में सिविक सेंस डिवेलप की जाए, उनमें बैनुल अक्वामी अमूर के बारे में आगाही जो है वो पैदा की जाए, और बहुत से ऐसे सियासी और समाजी मसाइल जो कि आज पाकिस्तान जो है वो फेस कर रहा है उनको समझे बगैर हम उनका हल नहीं निकाल सकते। सो मेरा ये ख्याल है कि यूसीपी का ये जो डिपार्टमेंट है ये इसी उसमें जहत में काम कर रहा है कि किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल शहरी जो है वो बनाया जा सकता है।
1: बहुत शुक्रिया सर, आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे इख्तिताम होता है। बहुत शुक्रिया आपका पाए, आपने बहुत कुछ सिखाया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद है कि स्टूडियो से बाहर बैठे लोग जो कि सुन रहे होंगे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: तो सामीन, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP Ki Duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: 24/7 only on FM 92.6. New City Ki Duniya. Fun, entertainment, news, knowledge. 24/7 only on UCP FM 92.6. UCP Ki Duniya.
1: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की. ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की. तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: 0-1-6-1.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
5: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
6: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
7: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز UCP کی دنیا FM 92.6.